ओम शत्रुमुखाय विद्महे हम सर्वधाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्।